पौन पानी में संत जन सूर्य उतार सभी धरती माल तन पर तन संत जान नाम गुरु सह ज्ञान विमुखी भय गया जम काल मुदा पहला वाइन चले न चंबुर पैर लान फिर सिर उठो रामा चटे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियों कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल का

0: जगाए पार। बोलू चखा चकी चख थल मरु ले बहुत अनंत, लागू मा दानिया का पखी पौंगिया लेना सा, सुए चार को आइए जंत ना पौंगिया करता है ते।
1: अंदर मन पाए सुए पैके तुझे सब कोई, नाच नाच से चले सरोट ना जाए सदना होए।

संत बाबा तरसिए, महापुरुष मस्तु आने वाले, कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या, अज भई चित कर दे

ज्ञान का मत सिर आ गया करोड़िया, तो केड़ी चीज का माण कर जवानी का, ये जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली है, ये झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आ गए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा यह भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी, ये माणी की निरंकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे काम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं, याद रख एक दिन पछता है। साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी है, काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते ते रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो मैं पापी, मेरे कोलो कुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े ने ता दिस दिन जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए, महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो। आज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, घूबा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पड़ता, पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ।

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। सिर गुरु रामदास।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदे, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदे। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साढ़े जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के किते हर वेले सामने रखो, ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनु जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नु जरूर पाएगी कि सच मैनु जीना नहीं आता, कि मैनु जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं एक दे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲੇ ਫੁਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ

आप जिन याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जिन बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे दी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किते भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधि ना है। असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावे आओ तो भावे जाओ, भावे रहो तो भावे कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे नूं सपोर्ट करते, एक दूसरे नूं सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नूं दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचण दे वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नूं यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरियां नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावे आवो तो भावे जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते थानू जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुम आखते हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आखते हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुम आखते हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पूछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आता, अस तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए, अस डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुम आख दो जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

0: कृपा निधान जल्द पूरो
1: करुणालय है
0: अर्थालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद
0: कृपा निधान जगद गुरु हे संसार पाप हरणे करना में सब दुख हरो सर्ण जोग दयाले हे सर्ण जोग दयाले दीनानाथ मैं आकर दीना

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे को छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे को वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही भेदा नूं सरलता विच कर देण वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर दी वड्याई करदे होए, बेअंतता दसदे होए, वड्डे दाते दी हमद करदे होए कहंदे ने, तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे, रोजी ही राज विलोकत राजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनू मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करन वाले ने, उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उना दी ता गल की करनी, उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है। पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है, रोजी हिराज विलोकत राज, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखिया, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखिया रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखिया रूहां नू भी सुखिया रूहां नू भी पालदा है, जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ां गजाज दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर इक लकड़ी सुक जांदी है, उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उन्हूं मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने, सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने, जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने, ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उन्हां नूं भी तूं अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो ते तो मुनकर ने, तेरियां दातां भी ले जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मान जांदे ने। हे मुनिम परमेश्वर, तेरियां नेमतां भी मान जांदे ने, ते तो मुनकर भी ने, पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा, ते उन ते मंगके ही देना है, मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी, ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां, किथों मंगा हो, कौन है इस दे मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उस दे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मुह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए। कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया ता सा, फिर होया की है। जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया। बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे भरवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनूं यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है। किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले। आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू यह निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना। जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है ओ करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे।

भारतम तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने कौन अपना महाराज। फिर तांता इतने डे जी रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धिया ने भी साथ नहीं देना, फिर कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो।

0: एक घटना होगी।
1: तो भाई एक दरगाह ही की माता जी बच्चों कर दे टिकट न कितना संभाल के यूके जाना हो हजारा रुपए की टिकट होती है भी समान टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता। नाम पूरे गुरु तो मिले नाम की जो प्रेरणा है ये नाम जपने वाले महापुरुष का नाम गुरु तो नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तो किस वेले मिले जिस वेले असि अमृत छे पंजा प्यारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपन फुलों सोध अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे तैयार कर तैयार अपने सोध के अपने आप को सोध के साहबा की हजूरी खड़ोते होते हैं। हजूर कहना उन्हें पंजा के अंदर मैं आप पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे पंचे सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं तो व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगी पातशाह जी ने इन बंधना कट दिया कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का नितने भी प्रेम गुरु के हुक्म रहना फिर अमृत पान करान को पहला फिर भी अरदास कर आख्या कर दूंगी जी हर वेले हर श्वास भुलना आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे गुरु बख्शते पंज प्यारे त्यार कर फिर अमृत छकने वाले उस वेले गुरमंत्र की दात गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोता महापुरुष बाबा जी वचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष कहे महापुरुष की जेडे सन गुरु ग्रंथ साहब जेडे तोड़ते उन्होंने संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्या तोड़ता है वह सानू गुरु तो तोड़ी संगत नहीं जेडे जुड़न वाले हैं जिन्हों की संदरिया दुर्मत मंजे मित्र सारे सही हाँ नी जग सभाया जन नानक विरले कहना है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने खैर अकड़ नाग फोटो में बहु ना भी किसी चीज का और नाम दिखे जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो इनम हो इसे तरह संत सारे चले हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है गुरु सिख है महापुरुष है वो आप गुरु भी बनेगा संत बड़ा जोड़ देगा
2: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं तर्दमंत्रंत पपीलते साग्रं लघंत पिंगं साग्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंधक है साध संगेण सिमरंत गोविंद साध संगेण सिमरंत।

नमो श्री प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नमो श्री भगौती।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती, नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यों बलंती।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे है। कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं।

नगारे वजदे जोधे गजदे ते साध सिंह जी जंग हो रहा साहब कहते नागरतन झागरतन।

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर नसे, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परा

चार ताल के अंदर यह रीतबद्ध है। इस ध्रुपद ताल भी कहते हैं, चार ताल भी कहते, ध्रुपद ताल भी कहते। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पगार पड़िए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नशे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अमर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसा की फतेह चार फूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब ने सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
0: एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसा।

0: एक खालसे को पुरक जाएंगे बाहर, देख खालसे को पुरक जाएंगे
1: बाहर। एक करे सिंह
0: झूलन नेजे हस्ती साजे, झूलन नेजे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत बाजे। सवा लाख जब धुखे पलीता, सवा लाख जब धुखे पलीता, तबे खालसा उदे

मटैया रंग पूम के पवैया पार पूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहु के तनैया है न मैया जाके पैया हूँ छोड़ हूँ के चुना कोट जादू प्रीत लाइया साधना सदैया धूल तानी

0: सब तन का गुण सतगुरु गुण सतगुरु जित मिल हर पड़दा सजना तू तन तन सुनत करे
1: मैं तुझ बिन अगर ना होई तुझ आपे

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम, जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार, जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरल अमृत बाणी का रस पीता है तो खुशकिस्मत। गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रसता है और पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं। जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे। फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे। बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा। सरसों किस तरह उगदी बड़ी मेहनत। फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी। फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा। ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल, प्यार दे नाल दीवा जगे। जो भी जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदा पे आपे दीवा सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक के दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रचना पवित्र करो सेवक के कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम। धन्यवाद जो गुरु के प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों को दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेदे ने किया सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लक्ष्मी दास तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं ते कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी साडा भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू। तो वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हूं ना जा हूं ना परदेसां जा। तो प्यारी सात संगत परमकारी दाता जी दोवां पतियां नूं श्री चंद लक्ष्मीदास गोडिया ते बैठे सानू ठा दिता। पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे हो पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है। पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहा हूं। बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोलो मोहंकार की अगली साली है। बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात होती है। आए कर प्यार नाल पढ़ो पहला सेहत बोले तो पिछे सारी सही संगत गल के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो। बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं ले जाता ते जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپرب منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلے سیو بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर जिन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर चेतना चलो मन भयो पंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग।